करना क्यों जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज स्वार्था जेड़ा भी इंसान तेरी भगती करदा है तू ओना दे कार्ज स्वार्था है इस करके

जो इच्छे सोई फल पावे, जेड़ा ठाकुरां दी सेवा करदा है ओ जो मंगदा है ठाकुर उन्हां नूं दिंदा है। ए गल पुजारी ने तन्ने नूं कही।

के दही रिड़क के लस्सी बनाई, एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी ले ठाकुर दी।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने कि थे रब

कदे श्रद्धा हो गई कदे शंका, कदे श्रद्धा कदे शंका, उत्थे दे उत्थे खड़े। एक चौथा वर्ग होर जिहड़े हर एक नूं पुछदे ने पाठ किवें करिए, सिमरन किवें करिए, साधना किवें करिए, पर करना कुरना कुछ भी नहीं। कहिंदे ने इन्हां दे जीवन दे विच जदों कोई गहरी सट बजे, गहरी सट, बड़े ध्यान नाल सुनना, कारोबार विच घाटा पै गया, गहरी सट बजी, मुखड़ा गुरु वल हो गया, जवान पत्नी दी मौत हो गई, जवान पति दी मौत हो गई, मुखड़ा गुरु वल हो गया, पहला नहीं मनते सी, बस धार्मिक दुनिया दे विच इस दुख नूं दारू आख्या है। ये दुख दुख नहीं है, ये दवाई है, दारू। एक आलम लिखदा है, शायर लिखदा है कि जख्म जब भी जहनू ए दिल पे पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसे साज की तार थे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे गुनगुनाते। कि जदों भी कोई जीवन दे विच दुख आया तो मुखड़ा गुरु वल हो गया। इसे करके जिहड़े गुरमुख बंदे ने वो परमात्मा नूं कहिंदे ने, ऐ परवतगार छोटा मोटा दुख दे ही रखना, छोटी मोटी तकलीफ दे ही रखना, घट तों घट तैनूं याद तां करदे रहे, छोटा मोटा दुख। बाबा फरीद अक्सर नमाज अदा करन तों बाद कहिंदे सी, ऐ अल्लाह ताला थोड़ा जिहा दुख मेरी झोली विच पाई रखना, क्योंकि दुख दुख नहीं है, दुख दारू है, सुख रोग है। विसर गया रब, बहुते सुख आ गए, रब विसर गया। जिनके प्रांगण में दौलत का सज्जर लगता है, उनका हर एक गुनाह लोगों को हुनर लगता है। जिन्हां दे घर दौलत बहुत होवे, कहिंदे ने उन्हां दा गुनाह भी लोगों नूं हुनर लगता है। हकीकत दौलत बहुती है, फिर मुश्ताकी माफ कहन देना, एक शादी छड़ के पंज पंज व्याह कर लेंदे, कई ऐसे भी राजे हुए 365 राणा। फिर लोग कहंदे सी इन्हां दा तां शाही ठाठ है, लेकिन एक गरीब मनुख जेकर दूजी शादी भी कर लवे, कहणगे करैक्टरलैस। एक सम्राट लखां दा कतल कर देवे, हिटलर, नेपोलियन, माओ, लखां दे कातल, लेकिन किसी ने भी उन्हां नूं कातल नहीं किया। एक साधारण मनुख किसी नूं थप्पड़ भी मार देवे तो कहिंदे ने हिंसक है, हिंसक। सुकरात एक गल कहिंदा सी कि कदे भी ना यह समझना कि जो कानून है वो सारिया वास्ते बराबर है, कदे भी ना इस भुलेखे विच पैना। तो सुकरात कहिंदा है कानून एक ऐसी जाल है कि जिस दे विच छोटे छोटे फस जांदे ने, बड़े बड़े निकल जांदे ने। हकीकत करोड़ों का घोटाला करन वाला कानून के जाल तो निकल जाता है, एक 100 रुपए का घोटाला करन वाला जाल विच फस जाता है, लखों का कातिल कानून के जाल तो निकल जाता है, और एक मनुख किसी ने थप्पड़ मारिया सी वो जाल विच फस जाता है। कई बार ऐसा भी होता है 20-20 साल सजा भोगण तो बाद फिर फैसला आता है कि ये तो बिल्कुल ही निर्दोष है, कुछ नहीं किया इसने। हकीकत तो मैं अर्ज कर दिया सी, सुख रोग है, दुख दारू, पर साहब यह भी कहते हैं कि जिसका जीवन समर गया फिर वो जीवन विच सुख रोग नहीं आते।

भूत है सोई तिसदे चन सब में चन हुए। गुरसा की जोत प्रगट हुए जो तिस भावे सो आरती हुए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनोआंदनो मोहि आही प्यासा।

बसन सोहेला। औध कटै दिन सरणारे मन गुर मिलका सवारे रहो यो संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इहो रस कथा।

व्यर्थ जात मारे न रखे वन कुय सर्व जिया कर सुई कह सूच कर हरि प्राण जपनान कुरबला कुबडाणी बैरं बैर बैर प्रभ जपिय पी अमृत हुमान तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरु मुखाय तिस की शबर नाहिं दृष्टाया नाम तन नम रूप रंग नम सुख नाम का संग नाम रह जो जन त्रिपतन मंतन नाम नाम समान उठत बैठत सूत नाम कह नानक जन का सदकाम बोला जह जिह बैदन रात प्रभ अपना जान की निदाद करह भगत आत्म के चाय प्रभ अपने सिंह रह समाई जो हुआ हुवत सो जान प्रभ अपने ककुम पछान दि महम बान बखान दुख गुण कही कना जान वाठ पहरु प्रभ सह हजूरी कह रान से जन पूरे मन मेरे दिन की ओट ली है मान तने अपना दिन जान दीहे जिन जाने अपना प्रभु पुछा दासु जान सर्व थोक का दाता दुखी शरण सरस उपावे दुसका दरस सपा मिटावे अब सियान सगरी छाड़ तिस जन की तू सेवा लागाम जान हुई तेरा नानक तिस जन के पूजा हो सात पैरा श्लोक सात पुरख जन जानिया सात पुरख का नाम दुसका संग सिखो द्रय नानक हर गुण का पति सात गुरु सिख कर प्रत पाल सिवो का गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुर्मत मारे हरा गुरु वचन हर नाम उतरा सतगुरु सिख बंधन काट गुरु का सिख बकार त्याट सतगुरु सिख नाम तन दे गुरु का सिख बड़वागी ही सतगुरु सिख हलत पलत सवार नानक सतगुरु सिख जी अनास मार गुरु कै गृह सेवक ज्वर है गुरु की आगा मन मह सहसकाउ कर काश न जना हर हनारदय साध ते आवे मन बीच सतगुरु के पास देश सेवक की कारज राय सेवा कर तुय नि कामी तिस कहूत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जसाव करिय नानक सो सेवक गुरु की माया तली बीस विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो सात गुरु जिस हृदय हर नावन पैर गुरु का बल जाऊ सर्व निधान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म ई कह आप नहीं कह परम सह सो से अन प्रया न जाइय नानक है गुरु बड़ पागी पाई सफल दर्शन पीखत पुनीत परसत चरण गायत निर्मल रीत वीर संग्राम गुण रवि पार ब्रह्म के दरगह कवि सुनकर वचन कर्ण आग निम संतु घातम पति अन पूरा गुर अखि आहु जा का मंत्र अमृत दृष्ट भी कवि संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जह पावे तसलय मलाय जिह पाई क उस्तद अनेक साध पुरख पूर्ण बबी कह बोल न पहचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराह निर्वैर सुखदायुता की कीमत कहना न पाए अनक भगत बंधन नियत कर चरण कमन हृदय सिमरय सबल हरि सदगम नानक जह प्रसाद सप्रभ जपन एहो हर रस उपावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सो हो उस पुरख का ना ही कदि विनाह जाक मन प्रगटे कुंता साठ पैर हर का नाम लिये सच बुदी सेवक आदि मोह माया का संग ना दीप मन महरा के हर हरि को अंधकार दीपक प्रकाश नानक परम मोह दुख तह तिनासी तब तुम वह ठांड वरताई अनंत पाया दुख नाटी पाए जन्म मरण की मिटे आंदेश साधु के पूर्ण उपदेश पा चूका निरपाव हुए बस सगल ब्याद मानती खै नसी जिसका साथ इन कृपा तरि सा संजाप नाम मुरारित हित पाई चुके प्राम का मन सन नायन को हर हर जा श्रवण निर्गुण आप सर्गुण पियो ही कलाता अर्जुन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कुंदा विपाय हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतरी को सोए ओत पोत रवि रूप रंग पै प्रकाश साध के संग राज रचना अपनी कलता अर्जुन को बै नानक बोल हरि श्लोक साथ ना चाले बिन भजन विखे सगली शार हर हर नाम कमाय बना नानक हो तन सार अष्टपति संत जना मेल करहु बिचारी समना में आधार और पाप समीत बिसार चरण कमल रेत में हमर तारहु करण कारण सुब्र सम्राथ दृढ़ कर गहु नाम हरवाथ हो तन संचह हुआ भगवंत संत जन कर निर्वंती का सराख मन माही सर्व रोग नान मिट जाही जिह तन को चर कुंट उठता वह सो तन हर सिवा ति उपाय वह जिस सुख गावन तो वाच मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सो वा कव कर भली करणी सा सोभा बज हर की शरण अन के उपाय रूप न जाय रूप मिट हर अवकत लाय सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवाह नु मान प्रभु दहवार का नाय दह दह तावता बैठा ता को बिघन ना लाग को जा कर बस हर सोई कलता ति ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पाऊ बिन सब पूर्ण होया सुभगत भया तुम प्रगह तेत कर जायु बस अविनाशी कह नानक काटि जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मर सुख चुका चय आवागमन मिटे प्रभु शिवा त्याग शरण गुरुदेव
ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾਹੂ ਵਧਾਰ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਦਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਣ ਨਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਨ ਫਲ ਪਾਈ, ਸੰਗ ਨ ਚਾਲ ਸਤੀ ਰਹਿ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ, ਮੂਰਖ ਮਰਾ ਸਤਮੀਤ ਕੁਟਾਂ ਬਾਰ ਬਨ ਤਾਇੰਤੇ, ਕਹੁ ਤੁਮ ਕਮ ਸਨਾਥ ਰਾਜ ਰੰਗਮੈ ਵਿਸਤਾਰਿੰਤੇ, ਕਹੁ ਕਮ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਹਸਤੀ ਰਾਤ ਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਹੈ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਗੀ, ਬੁਝੈ ਨਾ ਵਿਗਾ ਨਾ ਵਿਸਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਮੈ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਏ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਾਟੂ ਬੇਸਿਆ ਨੇ, ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ,

सह सुभज नैन गुण गायु गुण गायत तिरि उत्तर समैल विंस जय होम बिख फैल हुहि अचिंत बस सुख नैल सास ग्रास हरनाम समैल छाड़ सियन सगरी मना सत्संग पावे सच दना हर गुंजी संज करो व्याव हरि हर सुख दरगह जयकार सर्व निरंतरी कुदीख।

ताव सब सकत कहु के तठाय जब आप है आप अपने जो तर ताव कौन निडर कौन का डर अपने चल ताप करने नानक ठाकुर अगमा पार अपना शिव सुखा अपना सन दह जन्म मरण कहु कह बना सन जब उन कर तब रसोई तब जम की त्रास कहु के सोई जब अवगत या गोचर प्रभि कह तब चित्रगुप्त के सपूत लिख जा।

भक्ता भरक्त है, अनास है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, दिख है, लेख है, भेख है, ढा है, गां है, सम है, गंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, जात है, जाद है, चर प्रशांत है, प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंप्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंकर्मं, सर्वंयुक्ता, सर्वंमुक्ता, सावल सांत्वा प्रसाद, नमो नर्कनाशे सदाऊं प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं बभूते परमात्मा परमात्मे सदा सर्वसाथे गा स्वरूपे निर्बाध भूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीका मित्तो मीका सदाऊं प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांतवा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है कि उस नाग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहंद है कि राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि उसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है रिफुल सकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रनास है समवस्त मस्तुल निवास है अगंजल गनी मैं रजाय कर ही मैं समस्तुल जुबा कि साहब कराह कि नरकुं प्रनास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीजा समस्तुल अजीजा परंग परमीसा समस्तुल दीसा दिसुल लेखा मेसुल भेखा जमीनुल जमाह है मीकुल अमाह करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह के आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो भंग है मुद भार संत है प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम यर बर गंज हर नर प्रबंध जन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खन बर नर मानन भवनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम छिन जांग आसन भंग।

0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रखमन माहे।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावहे तिसको सिमरत परमगत पावहे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा।

0: तवर लुभाव हे।
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गवी जय।
0: जे प्रसाद तू सबको मान, मुक्ता को जस रसन बखान।

0: साध के संगे कूपर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी।
0: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर।